0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Guys, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
2: स्मॉल.
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
3: ब्रांच नेटवर्क
4: बिग.
3: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
1: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: Maddie, I need to open a savings account.
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक?
2: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
2: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

पर हम सब के बीच में उपस्थित दिल्ली सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, असीम ऊर्जा के धनी मेरे प्रिय मित्र श्री कपिल मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक वियॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रबीन शर्मा जी, पर्यटन के क्षेत्र में हमेशा ऊर्जा और कमिटमेंट के साथ में काम करने वाली टीएचएससी की चेयरपर्सन आदरणीय ज्योति मयाल जी, द एक्सलेंसीज एम्बेसडर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, मित्रों हम सब लोग आज यहां भविष्य के पर्यटन, भारत के लिए उसकी संभावनाओं और भारत में पर्यटन का भविष्य किस तरह से बेहतर हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के तहत जब हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में गति के साथ में आगे बढ़ रहे, और 2047 तक के इस लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो लक्ष्य उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोगों को देश और प्रदेशों में दिया है कि पर्यटन हमारी इकोनॉमी का, जो हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के सारे कयासों को झुटलाते हुए पहले क्वार्टर में हमने 7.5% से ज्यादा की ग्रोथ फिर एक बार रजिस्टर की है। जब पूरी दुनिया ये कयास लगाती थी कि जिस तरह का दबाव अभी दुनिया में है, जिस तरह से इकोनॉमीज दुनिया की सिमट रही हैं, जिस तरह की चुनौतियां विश्व के आर्थिक जगत के समक्ष खड़ी हैं, जिस तरह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड हुई है, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस जिस तरह से चरम पर है, एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी अवेलेबिलिटी का प्रश्न पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रवेश करने के बाद में सर्विस सेक्टर और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का सेक्टर दबाव में आएगा, सारे लोग इस बात की चिंता करते थे, दुनिया में इंपोर्ट की डिमांड कम होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उद्योग के प्रतिनिधियों का और माननीय प्रधानमंत्री जी के नीति कौशल का कि जिस तरह के फैसले देश की सरकार ने लिए और राष्ट्रहित के फैसलों को बिना किसी दबाव को स्वीकार किए हुए जिस तरह से लागू किया, भारत के हितों के साथ में समझौता किए बिना या कहीं भी झुके बिना जिस तरह से निरंतर भारत के हितों के परिप्रेक्ष्य में आवाज को दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर उठाया, आज उसका परिणाम है कि सारे कयास धूमिल हुए और भारत ने न केवल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रजिस्टर की है, न केवल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रजिस्टर किया, अपितु एक्सपोर्ट में भी भारत ने पिछले पहले क्वार्टर में ग्रोथ रजिस्टर की है। हमारे ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद जो है उसमें एक कथन आता है चरैवेति। सामान्यतः जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो हम कहते हैं कीप मूविंग, चलते रहिए या चलते रहो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये केवल आगे बढ़ने या चलने का आह्वान मात्र नहीं, अपितु ये चरैवेति जब ब्राह्मण उपनिषद में लिखा गया था तब इसके पीछे सोच ये होगा कि हम आगे बढ़ते हैं, कीप ऑन मूविंग, और ये कीप ऑन मूविंग जो है ये मनुष्य की अनंत जिज्ञासा, जो कुछ हासिल किया है उसे खोजना, जो कुछ मेरे अतिरिक्त पूरी सभ्यता ने, समाज ने, दुनिया ने, अन्य देशों ने हासिल किया उसको जानना, मनुष्य के आगे बढ़ने के साहस
उसकी खोज की प्रवृत्ति और नए संबंधों के सृजन की क्षमता का उद्घोष ऐतरेय ब्राह्मण में सदियों सदियों पूर्व हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया था। यदि मानव सभ्यता के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो मानव सभ्यता का इतिहास एक अर्थ में यात्राओं का इतिहास मात्र है। वो यात्राएं ज्ञान की खोज के लिए हुई होंगी, वो यात्राएं तीर्थों पर जाकर के दर्शन करने के लिए हुई होंगी, वो यात्राएं कुछ नया सीखने के लिए, नया जानने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नए रोजगारों के सृजन करने के लिए, नए मार्केट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हुई होंगी। किसी दूसरी संस्कृति या किसी दूसरी सभ्यता में रहने वाले ऐसे लोगों को समझने और जानने के लिए भी होंगी, या कहीं सेनाओं को एकत्रित करके किसी दूसरे भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, आक्रमण के लिए प्रयाण हुए होंगे। लेकिन वो सब यात्राएं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इन सब उद्देश्यों के साथ में जुड़ी हुई थी। भारत के इतिहास को यदि उठा करके देखें, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हम सबको मिलते हैं जहां हजारों की संख्या में भारत में इस तरह के यात्री भारत को जानने के लिए, भारत के ऐश्वर्य को, भारत की बौद्धिक संपदा को, भारत की बौद्धिक मनीषा को, भारत के इंटेलिजेंस को, भारत के आर्किटेक्चर को, भारत की संपन्नता को, समृद्धि को, भारत के ज्ञान और विज्ञान को जानने के लिए, खोजने के लिए भारत में आए। कुछ लोग कौतूहल के वश आए, कुछ शिक्षा लेने के लिए आए, कुछ व्यापार व्यवसाय करने के लिए आए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, कुछ भारत को देखने के लिए आए। और भारत के इतिहास में सर्वदूर देश भर में इस तरह के पदचिन्ह, इतिहास के पृष्ठों में इस तरह के यात्रियों के हमें अनेकों की संख्या में मिलते हैं। कालांतर में लोग, जो वो लोग वापस भारत का संदेश लेकर के गए, वहां से कुछ लोग भारत को लूटने के लिए आए, भारत से कुछ छीनने के लिए आए, भारत से कुछ ईर्ष्या रखने वाले लोग भारत की सभ्यता को मिटाने के लिए भी भारत में आए, कुछ भारत पे आधिपत्य करने के लिए आए, कुछ कुछ सदियों तक रहे, कुछ एकाध दो सदियों तक रहे। लेकिन अंततः भारत पूरे विश्व के लिए पहले भी कौतूहल था, आज भी कौतूहल का विषय रहा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम फ्यूचर ऑफ ट्रैवल पर विचार करते हैं तो हम केवल और केवल विमानों की संख्या, एयरपोर्ट्स की संख्या, विमानों के उड़ानों की संख्या, उसमें आने वाले यात्रियों की संख्या, नंबर ऑफ होटल रूम्स, नंबर ऑफ कीज, वीजा फैसिलिटेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, केवल मात्र चर्चा को यहां तक सीमित रखें तो मैं मानता हूं कि फ्यूचर ऑफ टूरिज्म के साथ में डिस्कशन पर वियॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर हम न्याय नहीं कर रहे। आज जब हम सब लोग यहां एकत्रित आए तो हमको इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में, आने वाले दशकों में, क्योंकि जिस गति के साथ में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तकनीकी जिस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर रही, परिवर्तन जीवन में सबसे शाश्वत है। इट इज अल्टीमेट ट्रुथ, द चेंज इज इटर्नल एंड इट इज हैपनिंग सिंस द डे वन ऑफ द दिस यूनिवर्स व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, तब से कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहा है। लेकिन पिछले 10,000 साल के मनुष्य के सभ्यतागत इतिहास में जितना परिवर्तन हुआ था उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन पिछले एक दशक में हुआ। पिछले एक दशक में जितना परिवर्तन, पिछले एक शताब्दी में जितना परिवर्तन हुआ था उससे ज्यादा परिवर्तन पिछले एक दशक में हो गया। जितना पिछले एक दशक में परिवर्तन हुआ था उससे ज्यादा परिवर्तन पिछले एक डेढ़ साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे जीवन में प्रवेश करने के बाद में हो गया। और ये परिवर्तन की सुनामी का दौर है, इसलिए हमें आज बदलते हुए मनुष्य के व्यवहार, आवश्यकताओं, उसकी सोच और उसकी जो क्षुधा है, उसकी जो हंगर है, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटीज को समझ करके यदि हम आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे तब हम फ्यूचर ऑफ ट्रेवल के डिस्कशन के साथ में, इस सब्जेक्ट के साथ में न्याय कर सकेंगे।
आने वाले समय में दो सभ्यताएं, दो देश, दो जो है समाज एक साथ कैसे जुड़ेंगे, आने वाले समय में मनुष्य दुनिया को किस तरह से देखना चाहेगा या किस तरह की दुनिया देखना चाहेगा, यात्रा आर्थिक विकास के साथ साथ में शांति, विश्वास एंड परस्पर अंडरस्टैंडिंग, इसका माध्यम किस तरह से बनेगी। आने वाले समय में टूरिज्म का मापने का पैमाना नंबर ऑफ टूरिस्ट के बजाय ये सारे विषय होने वाले। अभी आदरणीय ज्योति जी जब बात कर रही थी तब इन्होंने कहा कि भारत में 429 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक यात्राएं पिछले एक साल में हुई। आज का विश्व जिस तरह के दबाव के दौर से गुजर रहा है, जैसे मैंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आज दुनिया चुनौती के सबसे कठिन दौर से गुजर रही, आर्थिक संकट भी दुनिया के सामने खड़ा है और विश्व के विभिन्न देशों के सामने जिस तरह का के बीच में जिस तरह का तनाव है उसके कारण से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़ा है, सप्लाईज को जिस तरह से वेपन की तरह उपयोग करने की परंपरा दुनिया में प्रारंभ हो गई है, टैरिफ को जिस तरह से नई मिसाइल के रूप में यूज किया जा रहा है, ऐसी चुनौतियों के बावजूद भी, इतने कठिनाई का दौर विश्व में होने के बावजूद भी, जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की एक नए बेंचमार्क बन रहे, जापान जैसे देश में जहां निगेटिव इन्फ्लेशन होता था वहां इन्फ्लेशन की रेट जो है वो 2.5-3% तक पहुंच गई है, पूरा यूरोप भयानक दबाव में, गैस प्राइसेस बढ़ने के कारण से, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण से दुनिया की लगभग सब इकोनॉमीज में जो है वो इन्फ्लेशन नई ऊंचाइयां छू रहा है, इसके बावजूद भी पिछले एक साल में ट्रेवल सेक्टर ने नंबर ऑफ टूरिस्ट मूव्ड इन द वर्ल्ड जो लगभग आंकड़ा 1 अरब 30 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ के आसपास में आता है, उसके बावजूद भी 4% की ग्रोथ पूरी दुनिया में इस सेक्टर ने रजिस्टर की है। ये ग्रोथ इस बात की का प्रमाण है कि चाहे किसी भी तरह का दबाव हो, कितनी भी चुनौतियां सामने खड़ी हो, लेकिन अंततः मनुष्य स्वाभाविक रूप से ठहरता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली काम करता है, कंटिन्यूअसली यात्राएं करता है, उसकी प्रायोरिटीज बदल सकती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल सकती है, उन यात्राओं का स्वरूप बदल सकता है, यात्राओं की अवधि बदल सकती है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेवल्स जो हैं सारे दबावों के बावजूद भी कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और गति के साथ में बढ़ने वाले। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एविएशन, इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर का आकलन यह है कि पूरी दुनिया में 2050 तक ये यात्राएं जो है ये डेवलप हो जाएंगी, जो 130 करोड़ अभी है ये 260 करोड़ हो जाएगा, ये नंबर बढ़कर। लेकिन अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो जो आंकड़ा 430 करोड़ का है ये आंकड़ा बढ़ करके 2047 तक जो है वो 1000 करोड़ को क्रॉस करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो केवल और केवल पर्यटन के लिए जा रहे हो, यात्राओं का अभिप्रेत जब हम इंटरनेशनल नंबर भी काउंट करते हैं तो वो केवल टूरिस्ट इन ट्रू सेंस नहीं होगा, वो बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, वो लीजर के लिए ट्रैवल हो सकता है, वो मेडिकल के लिए टूरिज्म हो सकता है, वो सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए हो सकता है, भारत के कंटेक्स्ट में स्पिरिचुअल टूरिज्म हो सकता है, वेडिंग के लिए टूरिज्म हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन व्यक्ति घर से बाहर निकला है, घर से बाहर निकल करके किसी गंतव्य पर, किसी डेस्टिनेशन पे गया है, एटलीस्ट वन नाइट ही हैज स्पेंड एंड देन ही हैज रिटर्न्ड बैक, दैट इज वन ट्रेवल रजिस्टर्ड, और वो संख्या 1000 करोड़ तक पहुंचेगी। आज इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है और जिस तरह की ट्रेजेक्टरी दिखाई देती है उससे ये सामने स्पष्ट दिखाई देता है। निश्चित रूप से इन आंकड़ों में पूरी दुनिया में भी, दुनिया को भी और भारत को भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबको दिखाई देती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हम सबको सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में भी दिखती है, क्योंकि आज जिस तरह की व्यवस्था है, आज जिस तरह के हमारे पर्यटक स्थलों की क्षमता है, आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है
और जिस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास में हैं, और जब मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं, मैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट की बात नहीं करता, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के रिसोर्सेज हमारे पास में है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सेक्टर जो है अगर कंटिन्यूअसली इवॉल्व नहीं होता है तो बहुत बड़ा दबाव ये सेक्टर क्रिएट देखने वाला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पिछले 10 साल में 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत तेज गति के साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा के एक्सप्रेसवेज हाईवेज बने, हमारे हवाई अड्डों की संख्या जो है वो दुगने से भी कहीं ज्यादा हो गई, हमारे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ गए, हमारे यहां मॉडर्न एज न्यू एज रेलवेज अब हम सब के सामने एक न्यू नॉर्मल बन गया है, हमारा कम्यूटेशन का टाइम कम हुआ, हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ रजिस्टर किया है, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, हमारे यहां पर जो भारत में पहले बॉटम हैवी पिरामिड होता था वो अब मिडिल क्लास हैवी पिरामिड के रूप में परिवर्तित हो गया। 25 करोड़ लोग देश की सरकार के प्रयत्न प्रयास और भूमिका के चलते हुए गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे, और ये जो भारत की जो है मिड हैवी पिरामिड फॉर्मेशन जो है ये भारत के लिए असीम संभावनाओं के द्वार तो खोलती है, लेकिन उसके साथ साथ में उसी गति के साथ में हमें प्रगति करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है और उसका रोडमैप है, यदि उस रोडमैप के अनुरूप मैं अब तक जो कुछ हुआ है उसका आकलन करता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ में यहां खड़े होकर के एक बात कह सकता हूं कि अब तक जो परिवर्तन देश ने पिछले 12 साल में देखा है, चाहे वो सड़कों में देखा होगा, हवाई अड्डों में देखा होगा, रेलवेज में देखा होगा।

होगा, शिपिंग में देखा होगा, वाटरवेज में देखा होगा, इन सब में जितना परिवर्तन या कम्युनिकेशन में देखा होगा, वो सारा परिवर्तन यदि मैं 2047 के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो अब तक हम जितना कुछ करने वाले हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसका केवल 10% होगा। लेकिन इन सारी संभावनाओं के बावजूद भी हमारे आने वाले समय में हमारे शहर, हमारी प्राकृतिक विरासत, हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स और हमारी लोकल कम्युनिटीज, ये सब जो है एक नया प्रेशर जो है उसको अनुभव करने वाली है, क्योंकि यात्राओं की संख्या और जो है उन नंबर्स में और गुणात्मकता में बहुत बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगी। इसलिए आने वाले समय में जब हम फ्यूचर ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं तो रविंद्र जी, हम केवल नंबर्स की बात नहीं कर सकते, हमको यह तय करना पड़ेगा कि केवल कितने लोग यात्रा कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त यह होगा कि उनकी यात्रा कितनी सीमलेस हो रही है, वो कितने नए एक्सपीरियंस एग्रीगेट करके अपने साथ में लेकर के जाते हैं। देखिए, पिछले वर्षों में जिस तरह से जीवन को देखने की दृष्टि बदली है, द पर्सपेक्टिव टू लुक टूवर्ड्स लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज्ड, एंड स्पेशली द कोविड पैंडेमिक इरा हैज ट्रिगर्ड दैट। दुनिया का अगली जनरेशन का सोचने का नजरिया बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। सानी साहब बैठे, मेरी जनरेशन के लोग जो थे, ये सानी साहब के पास में पैसे बहुत सारे होते थे लेकिन खर्च नहीं करते थे। अभी इनके बच्चों का विचार बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, पैसे हैं नहीं, अपने खर्चे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो परिवर्तन है सोच का, ये परिवर्तन व्यक्ति की मानसिकता को दिखाता है। अल्टीमेटली टूरिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटालिटी एंड मेंटल फ्रेमवर्क। सो लोग अब मॉन्यूमेंटल टूरिज्म की जगह एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्रायोरिटाइज करने लगे। ऐसे समय में हमारे जो मॉन्यूमेंट लेड टूरिज्म जिसकी हम बात करते थे, हमको बहुत तेज गति के साथ में या तो उन मॉन्यूमेंटल डेस्टिनेशंस पर हमको नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि उनका अट्रैक्शन कंटिन्यूस बना रहे, वहां का एक्सपीरियंस होलसम बना रहे, और उसके साथ साथ में उनको हम उन डेस्टिनेशंस को डीकंजेस्ट भी कर सके। क्योंकि अगर एक ही अट्रैक्शन एक ही जगह पर रहेगा तो वो या तो फेडअप हो जाएगा या ओवर कंजेस्टेड हो जाएगा, उसके चलते हुए एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस डिटोरिएट हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय के इसमें सीमलेस कितना ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ साथ में वो कितना रिस्पॉन्सिबल टूरली ट्रेवल कर रहा है, ये भी आने वाले समय में एक अब जो है पैरामीटर ऑफ असेसमेंट निश्चित रूप से होने वाला है। अल्टीमेटली जब वो जा रहा है तब उसके उसके मोबाइल में या उसके कैमरा में कितनी फोटोग्राफ्स हैं, ये आने वाले समय में मैटर नहीं करेगी। वो मैटर ये करेगी कि वो कितना सार्थक अनुभव जो है, कितना होलसम एक्सपीरियंस अपनी मेमोरी में एक लिविंग मेमोरी के रूप में लेकर के जा रहा है। आने वाले समय में ट्रैवल एंड टूरिज्म का जब असेसमेंट WTTC जैसी संस्थाएं करेंगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में लोकल इकोनॉमी में टूरिज्म ने क्या इंपैक्ट किया है उस साल में, ये भी एक असेसमेंट का पैरामीटर होगा। आने वाले जो है कुल मिलाकर के आने वाले युग का पर्यटन जो है वो संख्या नंबर्स के बजाय वैल्यू पर आधारित असेसमेंट होगा, सुविधा के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आधारित होगा। मित्रों, आज जिस तरह की, जैसा मैंने चर्चा की, जिस तरह के अनिश्चितताओं के दौर से दुनिया गुजर रही और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी जो है उसको और मल्टीप्लाई करने वाले, जिस तरह से कैटास्ट्रोफिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, इराटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, स्कैटिंग रेनफॉल हो रहे हैं, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरह से जो है क्लाउड बर्स की घटनाएं बढ़ रही, और इसके अतिरिक्त जिस तरह का तनाव पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है, आने वाले समय में जैसा ब्रिक्स टूरिज्म समिट के समय में भी हम सब लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी और हमने अपने जयपुर जो डिक्लेरेशन है उसमें भी इस बात को समाहित किया था कि पर्यटन पीस डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा आधार दुनिया में बनने वाला है। किसी देश के बारे में जो हमारी एक एक एक परमानेंट बिलीफ होता है, सोच होती है, वैसी स्थायी धारणाएं जो है वो अब आने वाले समय में औपचारिक वक्तव्यों से नहीं बनेगी।
अपितु किसी देश के बारे में धारणा, लोग जो है वो वहां जाएंगे तब वहां के लोगों से मिलकर के जो कनेक्ट बनेगा, वहां की जिस फैमिली के साथ में वो इंटरेक्ट करेंगे, किसी टैक्सी में जब वो ट्रैवल करेंगे तब उस ड्राइवर से जो बातचीत करेंगे, एक होटल में जब वो रुकेंगे तब होटल के स्टाफ के साथ में, बटलर या स्टीवर्ड के साथ में जिस तरह से वो चर्चा करेंगे, एक ट्रैवल गाइड के साथ में जिस तरह से बातचीत करेंगे, एक लोकल आर्टिजन के साथ में बातचीत से जो एक्सपीरियंस वो अर्न करेंगे, एक यात्री जब लौटेगा तो एक हॉलिस्टिक मेमोरी एंड एक इम्प्रेशन पूरे उस देश के बारे में लेकर के लौटेगा। आज अगर हम दुनिया के किसी देश के बारे में हम बांधते हैं तो हम सिर्फ जो कुछ भी वहां का जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है या दूसरे देश उसके बारे में जिस तरह की बात करते हैं, एक आधिकारिक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जो आता है, सिर्फ उस तक हमारा विचार सीमित रहता है। आने वाले समय में ये विचार पीपल टू पीपल कनेक्ट के कारण से बदल जाएंगे और भारत की जो अवधारणा है, भारत की जो सोच है, वसुधैव कुटुंबकम का जो दर्शन हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने दिया था, या अतिथि देवो भवे का जो संदेश हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया था, वो आने वाले समय में, जैसा अभी कपिल जी ने कहा कि जब भारत के बारे में लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, अवधारणा बनाएंगे, भारत को कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, तब यदि हम इन दर्शन, जो हमारा मूलभूत दर्शन है, सिद्धांत है कि हम अतिथि को देव के रूप में, गेस्ट इज डिवाइन, इस रूप में जो मानते थे, अगर इस ट्रू सेंस में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो भारत की छवि और भारत की सांस्कृतिक महत्ता, जिसके बारे में अभी कपिल जी ने चर्चा की कि हमारा विश्व में प्रभुत्व और पहचान यदि बनेगी तो हमारी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर पड़ेगी, बनेगी, वो केवल सांस्कृतिक ताकत हमारी म्यूजियम्स में, हमारे हेरिटेज में, हमारी लिविंग हेरिटेज में, हमारे टेंजिबल असेट्स में, हमारी इंटेंजिबल हेरिटेज का जो प्रैक्टिसेस हैं उनके माध्यम से नहीं आएगी। दुनिया का साक्षात्कार अगर उसके साथ में होगा, और फ्यूचर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया का साक्षात्कार हमारे भारतीयों के व्यवहार में वो सब कितना दिखता है, इसके ऊपर जाकर के डिपेंड करे। इसलिए फ्यूचर का टूरिज्म और टूरिज्म का फ्यूचर दोनों केवल सरकारों या इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित नहीं हो, वो कंप्लीट इकोसिस्टम जिस तरह से काम करेगा, पूरा समाज किस तरह से उसको प्रदर्शित करेगा। क्योंकि एक पर्यटक जब पर्यटन का के लिए आता है तब उसका एक्सपीरियंस केवल उस होटल में पहुंचने या होटल से आगे जाकर के आगरा के ताजमहल, ताज के होटल से निकल करके ताजमहल जाने या ताजमहल से वापस होटल तक जाने तक नहीं होता। वो जिस दिन ट्रैवल प्लान करता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है, उस दिन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो पहले जो है ट्रैवल टूरिज्म के लिए घर से निकलने वाला व्यक्ति, पुराने लोग जो यहां बैठे हैं वो लोग जानते हैं कि लोनली प्लैनेट देख करके वो अपना अपने आप को ट्रैवल को, अपने टूर को आइडिएट करता था, क्यूरेट करता था। अभी वो व्यवस्था समाप्त हो गई। आज एक सोशल मीडिया की वायरल रील, किसी फिल्म में आया हुआ एक सीन, वो फिल्म का सीन केवल फिल्म सीन नहीं होता। जब इजिप्ट के पिरामिड के सामने खड़े होकर के और एक गाना जो है वो कैटरीना कैफ और अक्षय खन्ना के बीच, अक्षय कुमार के बीच में शूट हुआ था, मुझे फिल्म का नाम तो पता नहीं है, वो केवल एक गाना नहीं था, वो एक सीन नहीं था, वो एक पिरामिड ने अट्रैक्शन डेवलप नहीं किया था, उसके साथ में जो इमोशन और सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था उसने रिकॉर्डेड नंबर है कि इंडियंस ट्रैवलिंग टू इजिप्ट जो है उस नंबर में एक साल में डेढ़ गुना वृद्धि होगी, सिर्फ एक फिल्म के शूट ने। तो आने वाले समय में पर्यटक को जब वो पर्यटन के लिए तैयारी करता है, सोच करता है कि मुझे घर से निकल करके जाना है, तब उसके कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं उनके बीच में, कॉम्पिटिटिव नेशंस के बीच में भी और कंपीटिंग डेस्टिनेशंस के बीच में भी उसको तय करना। वरना आज से 2021 तक भारत आने वाले पर्यटकों के 65% लोगों के लिए हिंदुस्तान का मतलब होता था दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर एंड बैक टू दिल्ली, बस इतने में भारत पूरा हो जाता। ये गोल्डन ट्रायंगल जो है ये भारत की पहचान थी, इसके आगे कोई भारत को जानते नहीं थे। और इससे आगे अगर कोई जाता था स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए तो वो जैसलमेर चला जाता था, दक्षिण में एक आध जगह पे चला जाता था और बस इतने में भारत के लिए पर्यटन समाप्त हो जाता था। लेकिन आज ये डिसेंट्रलाइज होने लगा है क्योंकि लोगों के तय करने की प्रक्रिया बदल गई, विधि बदल गई, उसकी व्यवस्था बदल गई। इसलिए जब ट्रैवल प्लान करता है तब से उसका एक्सपीरियंस शुरू होता है कि हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा जो मार्केटिंग टूल्स हैं वहां से लेकर के हमारी जो सोशल मीडिया पर रील्स हैं से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमने किस तरह से अपने आप को जो है प्रदर्शित किया है, ये पहला एक्सपीरियंस है जहां से प्रारंभ होता है।
आज का टूरिस्ट जब ट्रैवल करना चाहता है वो अपना इंटरेस्ट सिर्फ डालता है अपने पास

में अवेलेबल टाइम को डालता है, अपनी प्रायोरिटीज को डालता है, अपने बजट को उसमें फिट करता है, तो एआई उसको टूर क्यूरेट करके देती। लेकिन एआई विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमन टच, वो कभी नहीं कर पाएगी। एक ट्रैवल एजेंट जिस तरह से उसको क्यूरेट करता है, उसको बताता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसको लेकर के पूरी तरह से समझता है, लेकिन ट्रैवल एजेंट को भी अल्टीमेटली उस जो है एक पर्यटक हमारे लिए दूध देने वाली गाय नहीं है, वो हमारे लिए जो है वो देवतुल्य है। इस विचार को साथ में लेकर के हमको उसके एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए काम करना पड़े। जब वो आकर के हवाई अड्डे पे उतरता है तब से लेकर के वो होटल में पहुंचता है तब चारों तरफ का परिदृश्य कैसा है, टैक्सी ड्राइवर ने उसको कितना प्रोफेशनली और कितना ह्यूमनली उसके साथ में इंटरेक्ट किया, ये अपने आप में एक उसके लिए उसकी ओवरऑल मेमोरी वो जो लेकर के जा रहा है उसको डिसाइड करने का एक व्यवस्था होगी। होटल में जाकर के उसने रूम लिया है, होटल चाहे बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम हॉस्पिटैलिटी है हिंदुस्तान की, इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन नो कंपैरिजन। जो सर्विसेज आज हिंदुस्तान का होटल देता है पूरी दुनिया में कहीं कोई, ऑल एम्बेसडर्स दे विल एक्सक्यूज मी बट दे विल पार्डन मी, बट देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ हॉस्पिटैलिटी विच वी द इंडियंस आर ऑफरिंग थ्रू आवर होटल्स। उसके बावजूद भी अगर होटल में एक किसी एक वेटर का व्यवहार अगर अनुचित हो, वो पूरी हिंदुस्तान की छवि को वो है वो उसके मस्तिष्क में निगेटिवली इम्प्रिंट कर सकते। वो डेस्टिनेशन पर जब जाता है तब डेस्टिनेशन पर उसको किस तरह का अनुभव हुआ है, वो अनुभव भी आने वाले समय में फ्यूचर के टूरिज्म को कपिल वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन दिल्ली में बना देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आने वाले समय में यदि वो एयरपोर्ट से उतर करके या इस मौर्या के होटल से निकल करके आपके डेस्टिनेशन पे जा रहा होगा, ढाई घंटे ट्रैफिक जाम में फंस गया है, भारत की छवि के ऊपर एक डेंट कालिक हमेशा के लिए लग जाएगी उसके मन में। और वो जितनी जगह पे बात करेगा भारत बहुत अच्छा है लेकिन ट्रैफिक जाम बहुत, इतने में खत्म हो जाएगा। एंड पुराने समय में सब आज से 10 साल 15 साल पहले जो ट्रैवलर आता था, अगर वो कहीं उसका एक्सपीरियंस जो है वो रॉटन होता था, खराब होता था, उसके पास को अपने अनुभव को एक्सप्रेस करने का कहीं कोई किसी तरह का जो है वो मीडिया नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में जाकर के अपने परिवारजनों को बता सकता था, पड़ोसी को बता सकता था कि यार मैं वहां गया था और मेरे साथ में गाइड ने चीटिंग कर लिया, मुझे ऐसी क्राफ्ट शॉप पर लेकर के गया जहां पे जो मुझे दिया वो सामान जो है वो नकली दे दिया था, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज उसके पास में इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर वो एक्सप्रेस कर सकता नहीं, करता है। और एक गलत एक्सपीरियंस, अब ट्रैवलर घर से निकल करके आता है, वो अगर दुनिया के किसी कोने से या देश के किसी कोने से निकल करके दूसरी जगह जाता है तो हम ये मानते हैं कि उसको कुछ पता नहीं। आज इस इंटरनेट की दुनिया में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उसको हर चीज की प्राइस पता है, हर चीज की स्टोरी पता है। अब आपका स्टोरी उसने यहां आने से पहले जो है चैट जीपीटी पर और परप्लेक्सिटी पर निकाल करके उसको स्टडी किया है कि ताजमहल की या कुतुब मीनार की स्टोरी है, और हमारा गाइड जो है वहां खड़े होकर के अपनी स्टोरी बता रहा है, वो जानता है कि ये गाइड बेवकूफ है, झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी मान लेगा। लेकिन वो अपना अनुभव जो लेकर के जाएगा उसको अगर एक जगह पर एक्सप्रेस करेगा, आप समझ लीजिए कि उसने उस डेस्टिनेशन को किल करने के लिए एक पंक्चर उसमें लगा दिया। और ऐसे 5-10 पंक्चर अगर एक डेस्टिनेशन पर लग जाते हैं, वो डेस्टिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टेक होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल बन करके इस स्टेक में, फ्यूचर ऑफ टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आएगा, हमको स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंट, ईमानदारी से भरा हुआ व्यवहार के साथ में काम करने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की आवश्यकता है उसमें ग्रोथ की आवश्यकता, मैं नहीं कहता कि नहीं आवश्यकता नहीं है, हम नए 50 डेस्टिनेशन बनाने पर काम कर रहे हैं, हम नए 15 जो है हेरिटेज एक्सकेवेशन साइट पे एक्सपीरियंस बनाने के लिए को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, हम टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारी एएसआई की साइट्स को में से अभी जो टिकटेड साइट्स हैं उसके नंबर को 2.5 गुना करके वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब विषयों पर काम करने के लिए हमको अवसर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रोथ होगा। जैसा मैंने कहा कि अभी 10% हुआ है, 90% काम और होगा, लेकिन अल्टीमेटली स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, इक्विप करना पड़ेगा, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम फ्यूचर ऑफ टूरिज्म को जो है वो हम इंश्योर कर पाएंगे आने वाले समय के कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन में भारत को एक परमानेंट

डेस्टिनेशन के रूप में खड़ा कर पाएंगे। कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जैसा मैंने कहा कि जब पर्यटक घर से बाहर निकलता है तब उसकी यात्रा का प्राप्त जो है उसके एक्सपीरियंस की स्टोरी शुरू होती है, वापस घर पहुंचता है या भारत से डिसएम्बार्क होता है तब तक के लिए उसकी स्टोरी कंटिन्यूअस चलती है। उस पूरे कालखंड में हम कैसे उसके एक्सपीरियंस की इसको सीमलेसली एलिवेट करके रखें, इसके ऊपर हमको काम करने की आवश्यकता है। तीसरा, भारत बहुत सारी विविधताओं वाला देश है। इन विविधताओं वाला देश होने के चलते हुए भारत में असीम संभावनाएं, उन संभावनाओं का दोहन करने के लिए हम ऑथेंटिक एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकें उसके लिए हमको अब पर्यटन को बियॉन्ड एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस लेकर के जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों का, मैं इस विषय के लिए राज्य सरकारों का आज यहां खड़े होकर के इस जिम्मेदारी से धन्यवाद करना चाहता हूं। जब 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस जिम्मेदारी दी थी तब हमने आते ही सारे राज्यों की जितनी टूरिज्म पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को सबको स्टडी किया, विच स्टेट इज ऑफरिंग द बेस्ट ऑफ द इंसेंटिव टू द इंडस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिज्म जो है वो सरकार नहीं बनाती, वो टूरिज्म को जो है वो इंडस्ट्री मिलकर के, स्टेक होल्डर्स मिलकर के बनाते हैं। सरकार एक डेस्टिनेशन के आसपास में ठीक वातावरण को ठीक कर सकती है, वहां पर सफाई करवा सकती है, वहां को व्यवस्थित कर सकती है, वहां जाने के लिए एयरपोर्ट बना सकती है, लेकिन जब तक वहां होटल्स नहीं होंगे, जब तक वहां रिक्रिएशन के दूसरे माध्यम नहीं होंगे, जब तक वहां अदर सर्विसेज नहीं होंगे, वहां फूड एंड बेवरेजेस वाले लोग नहीं जाएंगे, वो डेस्टिनेशन डेवलप नहीं हो सकता। जब हमने सारे स्टेट्स को स्टडी किया, मुझे खुशी होती है उस समय राजस्थान जो है वो बेस्ट स्टेट था जो सबसे अच्छे इंसेंटिव्स दे रहा था। राजस्थान ने इंडस्ट्री स्टेटस दे रखा था, राजस्थान ने एनर्जी बिजली की प्राइसेस पे कैप लगा रखा था कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे हम, इंडस्ट्री के रेट पर चार्ज करेंगे। हमने कन्वर्जन को जो है उसको रीएम्बर्स, कन्वर्जन अगर होटल के लिए लैंड कन्वर्ट कराता है, कन्वर्जन को राजस्थान में हमने जो है 100% रीएम्बर्स करेंगे ये तय कर रखा था, और इन्वेस्टमेंट लिंक्ड बहुत सारे इंसेंटिव्स डिफाइन कर रखे थे। कुछ दूसरे प्रदेशों ने अलग अलग तरह की सुविधाएं दी थी, हमने सबको कंपाइल किया, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंपाइल किया और उनको करके एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बना करके पर्यटन, क्योंकि मोटे तौर पर हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, तब राज्यों के साथ में साझा किया। हमने उनसे आग्रह किया कि आप अपने इस ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, इस तरह के इंसेंटिव्स आप दीजिए। मुझे आज खुशी होती है जब मैं यहां आपके बीच में खड़ा हूं, आज राजस्थान चौथे पांचवें छठे नंबर पे भी नहीं, आज मध्य प्रदेश ने उससे बेहतर इंसेंटिव्स देना शुरू किया। मध्य प्रदेश इज गिविंग, दे आर एक्सटेंडिंग 30% कैपिटल सब्सिडी ऑन द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इन द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। आप 200 करोड़ रुपए लगा करके अगर कोई 5 सितारा 100 कमरे की होटल बनाता है तो उसको 60 करोड़ रुपए सरकार सहायता के रूप में देती। सिमिलरली उत्तर प्रदेश इज डूइंग, आंध्र प्रदेश इज डूइंग, कपल ऑफ स्टेट्स आर एक्सटेंडिंग, में सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया बहुत सारी स्टेट्स ने, एक ही जगह परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार कंप्लायंसेज के बर्डन को कम करने के लिए भी काम कर रही है, हमने नीति आयोग के साथ मिलकर के उस दिशा में काम किया है। हमने टेक्नोलॉजी को भी इसके साथ में इंटीग्रेट करके हम डिजिटल टूरिज्म स्टैक बने, अभी आज से 4 दिन बाद में वर्ल्ड टूरिज्म डे होगा, उस वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हम उसको अनाउंस करने वाले हैं। हम अपनी एक ट्रैवल टूरिज्म की रिपोजिटरी बना रहे हैं ताकि जो है हम अपने टूरिज्म को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्रेस कर सकें, ला सकें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत सारे तरीके से काम कर सकती है, हमारे लिए अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए काम कर सकती है, उनको रिवील करने के लिए काम कर सकती है, नए हिडन जेम्स को लोगों के निगाह में लाने के लिए काम कर सकती है, एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन पर जो है वो लोगों की भीड़ को कम कैसे किया जा सकता है, लोगों को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, वहां की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकती है, वहां के
एनर्जी की का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको असेस कर सकती है, संकट के समय में तत्काल सहायता कैसे मिले इस पर काम कर सकती है। ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से हम किसी पुराने स्ट्रक्चर के और नए रूप में उसके पूरे वैभव के साथ में दिखा सकते हैं। डिजिटल ट्विन की नहीं, दो शहरों के बीच में कनेक्ट स्थापित कर सकती हैं, उनको समझने में सहायता कर सकती हैं कि किस तरह से इन दोनों शहरों के बीच में, दुनिया के दो शहरों के बीच में साम्य है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ये भी तय कर सकती है।

0: करेंगे तो आज जो इनक्रेडिबल इंडिया की हम बात करते हैं इसको हम इनएविटेबल इंडिया बना सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी ताकत हमारे पास में आज है, इतने तरह के संसाधन हमारे पास में। लेकिन मित्रों, इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। आज किस तरह के मिसकंसेप्शंस बनाए जाते हैं, मुझे एक प्रश्न, अभी मैं एक दिन इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में गया था, मुझे एक महिला पत्रकार पूछती है कि भारत जो है वो सोलो वीमेन ट्रैवलर्स के लिए सेफ नहीं है, वो कब सेफ हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने भारत में 428 करोड़ यात्राएं हुई, 2 करोड़ विदेशी भारत में आए, लगभग भारत में 430 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने ट्रैवल किया, उसमें से अगर 10% भी सोलो वीमेन ट्रैवलर होंगे, 5% भी होंगे, तो उन 20 करोड़ में से कितनी कंप्लेंट्स आपको कहीं भी रजिस्टर हुई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इटली गई हैं, जाती हैं वहां, तब आपको जो है आपको एडवाइजरी मिलती है, उसी में लिखा होता है कि आप अपने जो है पर्स को, अपने पासपोर्ट को, अपने कैमरा को, अपने मोबाइल को अंदर छुपा करके रखो, कोई छीन के ले जाएगा। यूएस में किस तरह की एडवाइजरी हमको मिलती है कि आप जो है छोटे रास्तों पर अंधेरा होने के बाद में न जाएं। इंग्लैंड की क्या हालत है, पेरिस की क्या हालत है, कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर हमारे यहां 430 करोड़ यात्राओं में किसी एक यात्री के साथ में कहीं ऐसी घटना हो जाए, मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक भी घटना होना हमारे मुंह पे कालिक पोती है, वो नहीं हो, हमको जिम्मेदारी के साथ में उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और भारत में अनेक प्रांतों ने हमारी एडवाइस पर टूरिस्ट पुलिस अपने यहां पर बना दिए, नए टूरिस्ट थाने बना दिए, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर काम किया, लेकिन एक भी घटना यदि होती है हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको टालना चाहिए, वो न हो, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। लेकिन अगर एक घटना हो जाती है, हिंदुस्तान का सारा मीडिया 48 घंटे तक सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाता। हम किसको नुकसान कर रहे हैं, हम अपने अल्टीमेटली अपने देश का ग्रॉस नुकसान कर रहे हैं, अपने सेक्टर को जो है वो हमेशा के लिए डेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, पर अपनी टीआरपी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। माफ करिएगा मुझे, जितने मीडिया के लोग यहां बैठे, रविंद्र जी आपसे भी कह रहा हूं, लेकिन ये जो है हमको इसके ऊपर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये केवल फ्यूचर ऑफ टूरिज्म, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ऐसा दिया था जिसपे मुझे बात करने के लिए, कि ये केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा, ये केवल होल ऑफ द गवर्नमेंट से नहीं होगा। अगर फ्यूचर ऑफ टूरिज्म को भारत में इंश्योर करना है तो आने वाले समय में इसको होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ में हम सबको काम करना पड़ेगा। इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी स्टेक होल्डर, एवरी इंडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ट्रू सेंस में हम अतिथि देवो भवे के भाव के साथ में काम करें। आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है और टेक्नोलॉजी के कारण से नॉलेज का एक्सेस जिस तरह से बढ़ा है, उसके कारण से हमको अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स को रीस्किल अपस्किल करना पड़ेगा, जिसमें ज्योति जी जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। लेकिन अभी हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सहानी साहब के हर ड्राइवर को ट्रेन करना पड़ेगा, जितने ट्रैवल एजेंट्स बैठे हैं उनके हर गाइड को भी अपने आप को जो है वो इक्विप करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, जो स्किल्ड है उनको रीस्किल करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम फ्यूचर ऑफ टूरिज्म को बना पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे। मुझे लगता है ये ऐसा विषय मुझे दिया है कि जिसपे मैं आपका हो तो 2 घंटे भी बात कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता है। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, ऐसे कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट पर आपने आज चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया। आदरणीय कपिल जी की उपस्थिति में आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की।
1: थैंक यू सर, thank you for that insightful address. I also now request Mr. Shekhawat as well as Mr. Kapil Mishra to please be on stage and accept our token of thanks. I request Mr. Vinay Malhotra, Ms. Jyoti.
2: Well, this was Union Minister for Culture and Tourism, Gajendra Singh Shekhawat, who addressed the Evian Iconic Tourism Summit, where ministers, ambassadors, leaders from tourism, aviation, and hospitality sectors, along with technology innovators, have gathered to discuss the future of global mobility and travel.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैडी।
4: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार।

0: हमें आज बदलते हुए मनुष्य के व्यवहार आवश्यकताओं और उसकी जो प्रायोरिटीज हैं उन प्रायोरिटीज को समझ करके यदि हम आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे तब हम फ्यूचर ऑफ ट्रेवल के डिस्कशन के साथ में इस सब्जेक्ट के साथ में न्याय कर सकेंगे।
1: यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत स्पीकिंग एट द वियोन आइकॉनिक समिट 2026 सेज दैट इंडिया मस्ट लुक बियॉन्ड टूरिज्म फुटफॉल्स एंड फ्लाइट नंबर्स embracing rapid transformation and focusing on the travelers of tomorrow. Singapore's core inflation rises for a third straight month to 2.2% in August, its highest since September 2024. Higher services, retail, goods and food prices drove the increase, adding to pressure on monetary policy.

0: terrorists who also killed Kashmiri Muslims.
1: से ह्यूमन टच को या ह्यूमन रिलेशंस को सब जो है रिप्लेस नहीं कर सके।
0: यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत स्पीकिंग एट द वियन आइकॉनिक समिट 2026 सेज टूरिस्ट रेप प्लान देयर वेकेशंस विद द हेल्प ऑफ एआई एंड सोशल मीडिया बट एआई कांट रिप्लेस द ह्यूमन टच ऑफ अ टूर प्लानर एंड एवरीवन वर्किंग इन दिस सेक्टर मस्ट डू सो सिंसियर। Eleven people, including a woman who was believed to be pregnant, shot dead in a horrific attack at a house party near Durban in South Africa. Authorities say massive manhunt launched to nab the shooters.
2: After shooting those individuals.
0: The dollar climbs to a two-month high as expectations of further Fed rate hikes boost demand. The euro fell $1.14 while sterling slipped 0.3%. Easing oil prices could still reshape inflation and global monetary policy outlooks.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddie, suggest a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Standing along this Trishuli River that gushed over the entire town, the smell of bodies, which many people fear, are still underneath this. Roaring sound of the military helicopters. The entire houses here that you see around me, behind me, is covered in silt. I'm Saloni Murarka, reporting for WEON from Nuwakot, Nepal.

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.
1: Guys, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
2: स्मॉल.
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
2: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
3: ब्रांच नेटवर्क
2: बिग,